I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रेस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

काम है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले।

काम है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले का हर

टाटा यहाँ, नमस्ते को कहते हैं टाटा यहाँ। अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा। ये जिसको बुलाएं करें

उजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।

समझा चुकी के आग हूँ मैं, न खेल मुझसे मोहब्बत के हक में नाग हूँ मैं।

0: अदनान समी और आशा भोसले जी, इन दोनों की आवाजों में गीत को आप सुने। और अब फिल्म खामोशी का गीत पेश है।
1: ना, जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुफा, बहन और ए भाई, तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

मेरा दिल अब तेरा हो साजना, लता जी की आवाज फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, मेरा दिल अब तेरा हो साजना, उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। फिल्म स्वयंवर का गीत और आप सुने मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर से। अगला गीत लता जी से आप सुनेंगे।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल।

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो,

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

आई बहारों की शाम मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म वापस से गीत आप सुने इट्स यू आर उज्जाला रेडियो।

सारा जमाना हसीनों का दीवाना। इसके बाद अब आप एक गीत सुनेंगे लता जी की आवाज में। फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

ये अदा कैसी है इन हसीनों में, लता जी की आवाज में। आप सुने फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त। En u luistert naar de leukste en gezelligste radio, Ojala Radio.

Feffi Cole से। जो मैं लेकर मैं सीता बीफर कभी ना निकली। या तो ममता शर्मा एंड वाजीत से आप इस गीत को सुनें।

प्यार हुआ इक्वल राड हुआ और फिर भी क्यों डरता है दिल। लता जी के साथ मन्ना दी से आप सुने गीत, फिल्म का नाम श्री 420। और सुनने वालों, अभी हमने कहा कि ये आखिरी गीत होंगे आज का प्रोग्राम में, लेकिन अभी कुछ समय और बाकी है तो एक गीत और सुना देता हूँ।

और क्यों होता है प्यार, क्यों होता है प्यार, क्यों आता है बहार, ना तुम जानो ना हम। लकी अली और रामिया से आप सुने फिल्म का नाम कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, उजाला रेडियो से। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में होंगे।

तू मेरे दिन में, मेरी रातों में, तेरी याद हम सफर सुबह और शाम। उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम और प्यार हो गया।

खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल आपके लिए। उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप देखें उजाला.nl।

Maria. Film सागर का गीत आशा जी एंड एस पी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों की आवाजों में आप सुने उजाला रेडियो पर। आशा जी मदन मत किशोर कुमार राहुल देव बर्मन के साथ यादों की बारात। उजाला रेडियो है

0: पैसों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला

सुने ये नहमा और भी कमाते कमाते उम्र गुजर गई नया फुरफेलन हरकन बार तो यू आर उजाला रेडियो ये है सुनो लो और हम यहीं से शुरू करते हैं वही प्रोग्राम यकी इस प्रोग्राम में सरनाम दिस के समाचार हम यहां से लाने वाले हैं दिल है सरनामी प्रोग्राम का नाम स्टोंग फॉन सुरीनाम

0: live vanuit de hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो अब उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो अब उजाला रेडियो.

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते या औरादा। इतवार का शाम का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का, हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, यहां से प्रोग्राम जो आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा, और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं आज इतवार के लिए। तो चलिए हमारे प्यारे सुनने वालों, पहला बैठक गाना आज का शाम का प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, गाने वाले होंगे देखा जाए सुरेश हीरा जी।

0: वाले शाबान शाबान और इस तरह से सुरेश हीरा जी के आवाज में ये खूबसूरत से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार प्रोग्राम में हमारे प्यारे सुनो लो, अब की बार जो बैठे गाना आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे एक और ऐसा है मशहूर कलाकार जिसका नाम है सत्यानंद रेखा जी।
1: आवन आवन कहीं गए कि बीते बारो मास छपर पुरानी हो गई कि तरकन लागे बास। अरे कब यही हो यार।

वेल शाबाश शाबाश बोले कब आइयो यार, कब आइयो यार। और इस तरह से सत्यनंत रेखा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। हमारे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं सुभाष और चलिए अब की बार प्रोग्राम में एक और मशहूर कलाकार हिस्सा लेने वाला है जिसका नाम है रामदेव चैतू जी।

Well, शाबाश कितना बिसाल कितना मोई बेमिसाल गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे खास करके रामदेव चैतू जी के आवाज में। चलिए अब की बार हमारे प्यारे सुनने वालों अब की बार प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है सोनी मैन।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में आप लोग सुने बोले तुम्हारा शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है हमारे प्यारे सुनने वालों, जो आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम बैठ गना हंगामा।

वेल तोरे सैया पर मार पे और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे खान शिर के द लायन किंग ऑफ बैट गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों और उजाला रेडियो का दफ्तर का तार की नंबर है 020-409-0807 या तो info@ujala.nl पर आपको हर एक इन्फो मिल सकता है। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक बार फिर चलिए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है स्वर्गीय रामदेव चैतू जी।

वेल लोगवा नजर लगावे ना हम ना थनिया ना ही पहनवे। अवसरों से रामदेव चैतू जी के अवांश में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है और इस बार होंगे परवेश पीर खान के वंश में। गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

Wel, Shabansh, ouwe Pia, maar deze ouderen zijn perwees, per kan kevang smigana je programma, abi aap luk sundra hitin. आपकी बार प्रोग्राम में हिस्सा जो लेने वाले हैं और नाम है प्रदीप चैतू जी के आवास में

वेल, अपने दुखों में रोने वाले बोले मुस्कुराना सीख लें। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और वो भी खास करके देखा जाए और वो भी प्रदीप चैतू जी के आवाज़ में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे।

वेल मालिक सीताराम सोच मन में काहे करे, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे और वो भी खास करके प्रदीप चैतू जी के आवाज में। उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वाले बैठ गाना हंगामा, जो हर इतवार के शाम में 4 से 6 बजे तक आप लोग सुने हैं। और चलिए अब की बार प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है खास करके दलांकी व बैठ गाना देवेंद्र सिंह सिवनाथ जी।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं, इतवार का प्रोग्राम है हमारे प्यार सुनने वालों। और चलिए वही गाना फिर से हम आपको सुनाते हैं सिल्वा के माई अमित शिवगुलाम जी के आवाज में।

अब न सुनब तुर बतिया तो हर आओ सरो से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने अमित सुगलाम के आवाज में। चलिए इन्हीं के आवाज में एक और गाना हो जाए हमारे प्यारे सुनने वालों। यू आर उजाला रेडियो।

वेल वेल शाबाश शाबाश, एक तो गोरी हसीन, ऊपर से पहने सारी महीन और नहाए कोकरों के पानी में, वेल कितना मोई। अमित शिव गुलाम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने।

शाबाश शाबाश बोले था मलो मोरे भैया जी यूं रिसलों से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने प्रदीप चैतु जी के बांस में उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो बैठ गाना जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने वालों एंड चलिए अब की बार बहुत दिनों के बाद चली अमुआ बी ने

वाले शाबाश शाबाश बोले गोरिया के चहले और बोले अमुआ बीने जाए। वेल कितना मोई कितना 20 साल गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने।

Well, shabash, shabash, patr mori kar yahya and boy dole balam. आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे सुरेश हीरा जी के आवाज में, जुआड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों, और आ जाना गुड़िया नौ रंगिया के तरह तरह।

0: शाबाश शाबाश बोले आजा आजा गोरिया तू नौरंगिया के तरे तरे।
1: भैया जरा गधा हुआ कहाँ है करो बाबा
2: गधा हुआ एक बार जन्म में मनुष्य के जन्म पाए लाई मनुष्य रहा इंसान एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर इस जन्म में देख अब गधा बन के भोगे भैया हाफिज।
1: अच्छा भैया जयराम तो जब तू मरिए तब तू कौन की होगा
2: देख भैया हाफिज जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जाए और जो मरब कैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

वेल शाबाश शाबाश बोले दूसर के धनवा तो खाए के मर जइयो तो गधा बन के भरियो। चलिए अब की बार हमारे प्यारे सुनो लो स्वर्गीय अवध बिहारी जी के वंश में।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से पंडित आवत बिहारी जी के बाद उसमें गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनो लो उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। और चलिए अब की बार एक वो गाना तो लोग सुनावे और ये गाना गाने वाले होंगे खास करके देखा जाए ईश्वरीय जगदीश उदित राम के आवाज में ये गाना पेश है।

भाविसरों से, खास करके हमारे स्वर्गीय जगदीश उदित राम के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों है और बैठे गाना जो आप लोग सुन रहे हैं। चलिए अब की बार प्रोग्राम में एक और ऐसा कलाकार को हम ला रहे हैं जिसका नाम है देसी रघु सिंह जी के आवाज में एक खूबसूरत से गाना प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। और चलिए गाना पेश है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है हमारे प्यारे सुनने वालों, और गाना पेश है इस तरह से।

वेल प्रेम मिलन के कारण आज कहीं मैं जोगन ना बन जाऊं। उस तरह से गाना जो आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों, खास करके स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी के आवाज में।

लल्ले शाबाश शाबाश और इस तरह से बिशुन जत्ते किसुन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए हमारे प्यारे सुनने वालों, इन्हीं के आवाज में एक और गाना जो आप लोग सुनेंगे, बिशुनवती कुशल के आवाज में एक और गाना हो जाए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

मौसम कहता है स्वागतम। लता जी के साथ किशोर कुमार से गीत आप सुने, फिल्म तोहफा से निकाला हुआ। और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी साहब।

सोने के दिल वाला कोई चांदी का दिल वाला। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप गीत को सुने और फिल्म माया से निकाला हुआ। एंड मुकेश जी, फिल्म मिलन का गीत।

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: live vanuit de hoofdstad. Uzana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। हर एक इतवार की रात को बनाया जा रहा है आपकी खातिर। और इस प्रोग्राम में जैसे आपको पता ही है तो हम गीतों और गजलें आपको सुनाते हैं और बातें कम करते हैं ताकि इत्मीनान से इस प्रोग्राम को आप सुन करके और इस प्रोग्राम से लुफ्त उठा सके। और हाँ, जरूर अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें तो आप एक ईमेल भेज सकते हैं और ईमेल पता है, ईमेल एड्रेस है info@ujala.nl। तो चलिए पहली गजल आशा जी की आवाज में पेश है।

जलद महमूद की आवाज, गीत और गजल की दुनिया में आप अब सुनेंगे गुलाम अली को कविता कृष्णमूर्ति के साथ।

वो नहीं मेरा, वो नहीं मेरा, मगर उससे मोहब्बत है तो है। गुलाम अली और कविता कृष्णमूर्ति से

दिन ढला रात फिर आ गई, सो रहो अशोक खोसला की आवाज में गजल को आप सुने। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। पंकज उदास जी की आवाज में आप सुने एल्बम नया बसे निकाला हुआ।

आपके साथ और हजारों लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, और अगर हजारों लोग सुने या ना सुने, आप जो सुन रहे हो ये हमारी खुशनसीबी है।

तुमको भूल ना पाएंगे हम ऐसा लगता है। लता मंगेशकर, आशा जी एंड जगजीत सिंह से आप सुने।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। और इस प्रोग्राम में हम आप को गीतों और गजलें को सुनाते हैं, बातें कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप प्रोग्राम को सुने और आप लुफ्त उठा सकें। और चलिए इस साप्ताहिक प्रोग्राम में आज हिस्सा लेंगे पहला फनकार, वो होंगे हरिहरन जी।

ये धूप एक सफर और धूप की छाँव में चलता है हर एक जीवन। हरिहरन की आवाज में आप गजल को सुनें।

कहूं जाने मन की तेरा दिल सुने मेरी बात। जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल को आप सुने और ये उजाला रेडियो है। प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया और अब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे चंदन दास जी।

बढ़ा के प्यास मेरा उसने हाथ छोड़ दिया, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से आप इस गजल को सुने। उजाला रेडियो पर गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, और सुनने वालों, आप जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं ये हमारी खुशनसीबी है।

जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आप सुने भूपिंदर सिंह से।

और मेरी तन्हाई जगजीत सिंह की आवाज में गजल को आप सुने। प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया और स्टेशन उजाला रेडियो। और चलिए अभिजीत की आवाज में एक और गजल पेश है।

याद है तेरी वो पहली मुलाकात, याद है तेरी हर एक बात मुझे याद है। अभिजीत की आवाज में आप सुने और अब हिस्सा लेंगे एक बार फिर आज का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में। हरिहरन जी,

हुस्न वालों का खुदा लगता है, यार तू सबसे जुदा लगता है। हरिहरन की आवाज में इस सुंदर सी गजल को आप सुने सुनने वालों, और आज का इस प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में एक आखिरी गजल भूपिंदर सिंह की आवाज में पेश है।